0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Hazar 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गए ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 97 2 ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97।
2: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
8: foot tapping music.

0: It's commercial time.
1: महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, अहले नॉटिंगम को जिसने ईद मिलादुन नबी मुबारक। और इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ने के लिए एक्सेलसियर नवाब ने सजाई है एक खूबसूरत रूहानी और वजदानी शाम, जहां अश्क मेरे नात सुनाए तो जब क्या। अ ब्लेस्ड इवनिंग ऑफ नात, लव एंड रिमेम्बरेंस, महफिल मिलादुन नबी, मंडे 7th सितंबर 2026 एट 6 पीएम ऑनवर्ड्स। इस महफिल में दुनियाए नातवानी के अजीम और नामवर सनाखान मुस्तफ़ा शामिल हो रहे हैं। कारी शाहत महमूद कादरी, सैयद हसनुल्लाह हुसैनी, हाजी हुसैन यूसुफ, वसीम अब्बासी और तौफीक अहमद तौफीक नकाबत के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हुनैन मसूद, तो भूलिएगा मत, खुशू और खुजू के साथ बावजू होकर इस बाबरकत शाम का हिस्सा बने अपने हलका और अहबाब के साथ, क्योंकि अश्क जब तक वजू नहीं करते हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते। वेन्यू है एक्सेलसियर नवाब, 527 लोटस रोड, नॉटिंगम, NG51EL। मीडिया पार्टनर फजा 97.1 FM।
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 0757729926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: Attention,
2: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल,

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम एंड 72E
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
10: You are listening 97.1 FM.
11: Are you

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये

0: MC सर्टिफाइड भी हैं।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
5: This is a public service announcement.
6: Everybody. The station.
7: That plays
8: foot tapping music.
9: Hazar 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।

0: फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
1: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: This is a public service announcement.
4: The station.
5: That plays
6: foot tapping music.
7: Hazar 97.1 FM.
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैप।

0: It's commercial time.
1: महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, अहले नॉटिंगम को जिसने ईद मिलादुन नबी मुबारक, और इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ने के लिए एक्सेलसियर नवाब ने सजाई है एक खूबसूरत रूहानी और वजदानी शाम, जहां अश्क मेरे नाथ सुनाए तो जब क्या, अ ब्लेस्ड इवनिंग ऑफ नाथ लव एंड रिमेम्बरेंस, महफिल मिलादुन नबी, मंडे 7th सितंबर 2026 एट 6 PM ऑनवर्ड्स। इस महफिल में दुनियाए नाथवानी के अजीम और नामवर सनाख्वान मुस्तफ़ा शामिल हो रहे हैं, कारी शाहत महमूद कादरी, सैयद हसनुल्लाह हुसैनी, हाजी हुसैन यूसुफ, वसीम अब्बासी और तौफीक अहमद तौफीक। नकाबत के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं हुनैन मसूद। तो भूलिएगा मत, खुशु व खुजू के साथ बावजू होकर इस बाबरकत शाम का हिस्सा बने अपने हलका व अहबाब के साथ, क्योंकि अश्क जब तक वजू नहीं करते हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते। वेन्यू है एक्सेलसियर नवाब, 527 लोटस रोड, नॉटिंगम, ND51EL। मीडिया पार्टनर फजा 97.1 FM।
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वे
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-772-92926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
8: Attention!
9: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
10: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
11: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
10: लासा ट्यूशन सेंटर?
11: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
10: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
11: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
10: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
12: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आए।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: ओखाना कढ़ाई की खुशबू, गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी।
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज शनवारी और चरसी कढ़ाई की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा।
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज
7: फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
2: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
9: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिंग रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM।
13: You are listening 97.1 FM.

Assalamualaikum, Namaste, Sat Sri Akal. Hello, hello, hello. A very beautiful, exciting, plus charming morning. सभी सुनने वाले लिसनर्स के लिए थे तो लिसनर्स रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से मैं हूँ आपकी होस्ट वन एंड ओनली आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो यानी कि आपका अपना कंफर्ट प्लेस द डीवा डायलॉग जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप पे। तो दरअसल जैसा कि है आप सभी को मालूम कि रेडियो फजा 97.1 FM ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ होती है मेरी और आपकी कम्युनिकेशन और फिर हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट का फुल डोज यानी कि मज़े मज़े के टॉपिक्स, कुछ ऐसे मौजूद जो आपको पसंद हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मुझे पसंद हो, साथ ही साथ कुछ ऐसे ट्रैक्स जो आपके पसंदीदा हों और कुछ ऐसे ट्रैक्स जो मुझे पसंद हो। तो कुल मिला के कुछ इसी तरह से हमारे इस शो का पैटर्न डिज़ाइन किया गया है ताकि हम अपने सभी लिसनर्स की यह भरपूर फरमाइशों को पूरा करें और साथ ही साथ अपने तमाम तरह लिसनर्स की बोर्डम को दूर करें। सो वेल लिसनर्स, अगर अभी तक आपने इस खूबसूरत से दिन का आगाज कर लिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने भी अभी तक इस खूबसूरत से दिन का आगाज नहीं किया तो कोई बात नहीं, आइए मिलकर करते हैं इस खूबसूरत से नए दिन का आगाज, क्योंकि हर आने वाला नया दिन अपने साथ लेकर आता है बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी डिफिकल्टीज, प्लस कहीं ना कहीं अगर देखें तो चैलेंजेस के साथ बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हर आने वाले नए दिन के साथ हमारी जिंदगी में शामिल होती हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी अचीवमेंट्स आ जाएं लेकिन इंसान को बिल्कुल भी चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। सो वेल, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो जहां आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उसी के साथ ही आपकी ज़िंदगी में आती हैं बहुत सारी अचीवमेंट्स। सो अगर ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है सो यू हैव टू बी वर्क हार्ड एंड प्रूव योर सेल्फ लाइक कि आप ये करके दिखा सकते हैं और कुछ नया बन सकते हैं। सो वेल लिसनर्स, बात मैं ये कह रही थी कि हम इस नए खूबसूरत से दिन का आगाज करते हैं लेकिन बातों में से बातें निकलती चली जाती हैं, सो गुफ्तगू का मौजूद थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप अभी भी सुस्ती और काहली में है मुब्तिला सो बिस्तर को छोड़ दीजिए और अपने कमरे से बाहर निकलिए, क्योंकि बाज़ुकात हम जब बहुत लंबे समय तक अपने रूम में रहते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर कदम निकालते हैं तो आपको मालूम होता है कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप मुश्किल समझते हैं वो उस कदर मुश्किल नहीं होती। सो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने ये करना है कि आप अगर तो कॉफ़ी लवर हैं तो कॉफ़ी का एक मग जल्दी से रेडी कर लीजिए, लेकिन अगर आप चाय लवर हैं सो जल्दी से चाय बना लीजिए और बालकनी में आ जाएं। 2 से 3 मिनट के लिए बाहर का खूबसूरत सा व्यू एंजॉय करें, साथ ही साथ मुझे ट्यून करें, मेरी आवाज़ को सुने और इस मग को जब तक आप कंप्लीट करते हैं तब तक आप अपने इस पूरे दिन का स्केड्यूल रेडी कर लें, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। सो इस तरह से एक नया दिन आपने स्टार्ट किया है और अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल भी कोई वक्त ज़ाया ना हो, सो अगर आप इसी सोच पर मुब्तला रहेंगे कि किस तरह से और कब कहाँ मुझे कुछ स्टार्ट करना है, सो उस तरह से सोचते सोचते बहुत सारा वक्त आपका वेस्ट हो जाएगा। सो इन 4 से 5 मिनट्स के अंदर अंदर जल्दी से अपनी कॉफ़ी का मग कंप्लीट कर लीजिए और साथ ही साथ सोच लीजिए कि आज के दिन आपने क्या क्या काम करने हैं, बाकायदा तौर पर एक लिस्ट रेडी कर लीजिए अपने माइंड में और सबसे पहले आप उन कामों को रखें जो कि थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि आई नो कि जो ईजी टास्क होते हैं उन्हें हम आराम से बाद में भी निपटा सकते हैं और वो बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लेते, लेकिन जो मुश्किल टास्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। सो मेक श्योर किया करें कि आप पहले मुश्किल टास्क कंप्लीट करें एंड देन फिर आप इजी टास्क की तरफ बढ़ें। और
साथ ही साथ ये कि एक अच्छे से खूबसूरत से नए दिन का आगाज तभी मुमकिन है जब आपके पास मुकम्मल हो एनर्जी का फुल डोज। सो एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है एक बहुत अच्छे से एनर्जेटिक से मील के साथ। सो जिलेसर्स, आपने क्या करना है? अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लेना है, क्योंकि आपको जरूरत है बहुत सारी एनर्जी की, उस एनर्जी की जिसके तहत आप पूरे दिन को प्लान करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे और अपने इस दिन को प्रोडक्टिव बनाएंगे। सो द लिसनर्स, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए और साथ ही साथ मुझे बताइए कि कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। वेल, आज मैं बातों में कुछ इस तरह मगन हो गई कि मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मैं आप सबसे पूछूं कि आप सब कैसे हैं। सो उम्मीद तो यही है कि आप अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं खुश होंगे, आबाद होंगे और कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। वेल, अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है या आप अभी भी इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि किस तरह से आज के दिन को प्लान करना है, वैसे तो मैंने तरीका आपसे शेयर कर दिया है कि किस तरह से जितनी देर में आपका ये कॉफ़ी या फिर चाय का मग कंप्लीट होगा उतनी ही देर में आपके पूरे दिन का स्केड्यूल भी रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत या दुश्वारी पेश आ रही है, सो कोई भी टेंशन की बात नहीं, मैं हूं ना, क्योंकि मैं हूं आपकी होस्ट, ना सिर्फ होस्ट बल्कि दोस्त ज़ैनब फातिमा। सो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं वो तमाम तरह की थॉट्स जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं या फिर कुछ ऐसा जो आपको बॉदर कर रहा है या आप किसी भी चीज़ को लेकर हैं थोड़े से भी कन्फ्यूज। सो किस तरह से आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, चले आइए मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। सो जी 01157100971 ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, यानी कि ये वो तरीका है, वो रास्ता है जिसके तहत आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने मन की तमाम तरह की बातें। सो आपके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, आज के दिन के हवाले से क्या सोच रहे हैं और इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से देख रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, हर तरह की मालूम आप हमसे शेयर कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको आपकी होल सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी से एडवाइस दूँ। सो अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में है किसी ऐसे शख्स की कमी जो आपको सुने, आपको समझे, सो रेडियो फजा 97.1 FM ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जो आपकी इस कमी को दूर कर देगा। तो इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू ना सिर्फ आप अपने पर्सनल थॉट्स हमसे शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा आप दुनिया जहां की कोई भी बात किसी भी हवाले से, किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर, या आप कुछ भी चाहते हैं जो हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, जैसे कि आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं, प्रोग्राम का ओवरऑल पैटर्न क्या होना चाहिए, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, आपको क्या चीज़ें ना पसंद हैं, या फिर आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका फेवरेट साउंड ट्रैक कौन सा है, क्योंकि यहां हर गाना वही शामिल किया जाता है जो हमारे लिसनर्स को हो पसंद। सो आप मुझे जल्दी से इस नंबर पे जाकर टेक्स्ट करें अपने नाम के साथ, कोई भी प्यारा सा पैगाम है जो कुछ आप हमसे शेयर करना चाहते हैं जल्दी से लिखकर भेज दीजिए। वेल, मैं पूरी कोशिश यही करूंगी कि आपका फीडबैक सर आंखों पे रखूं। इसी के साथ ही लिसनर्स, मैं आप सभी को बताती चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं। सो ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप रेडियो फजा 97.1 FM से जुड़ी हर तरह की मालूमात सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट के थ्रू हासिल कर सकते हैं। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रेडियो फजा 97.1 FM पर अब कौन से नए इवेंट्स हैं आने वाले, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस प्रोग्राम में है आने वाला, सो हर तरह की मालूमात आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पे। साथ ही साथ आप हमारी दी गई एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है, वो भी आप सभी से शेयर करती चलती हूँ। आपको बस जाना है एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहाँ जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपके सामने जो फर्स्ट एप्लीकेशन आएगी जो कि पर्पल कलर के आइकन के साथ होगी, जी हाँ यही है हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन। सो आपने जल्दी से इसे इंस्टॉल कर लेना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना और इसी तरह से बन जाना है हमारी इस फैमिली का हिस्सा।

ऑलराइट डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत से ट्रैक्स? वेल, उम्मीद तो यही है कि इन ट्रैक्स को सुनने के बाद आपका मूड अब काफ़ी हद तक इंस्टेंटली चेंज हो चुका होगा और अब आप थोड़ा सा रिफ्रेश फील कर रहे होंगे।

0: वेल लिसनर्स, अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ इसी तरह से आपके पसंदीदा ट्रैक्स भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने तो सिंपली आप हमें बता सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी हम आपकी तमाम सजेशंस को अपने प्रोग्राम में लाजमी शामिल करें। सो वेल लिसनर, जैसा कि ट्रैक से पहले मैं बात कर रही थी कि हम इस ट्रैक के बाद रीवा डायलॉग को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। सो जिस तरह से कल का हमारा टॉपिक था फिजिकल हेल्थ, कार्डियो एंड योगा, जिसमें मैंने आपसे शेयर किया कि किस तरह से कार्डियो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कार्डियो एंड योगा के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपको कल का शो अच्छा लगा होगा और आपका फीडबैक भी मुझे मिल गया था। सो फिलहाल अभी एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चलता है, सो हम इस कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, लेकिन जब हम कमर्शियल ब्रेक से वापसी पर आएंगे तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज़ वेरी अमेजिंग। प्लस ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिसे लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं। सो हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर करें। सो जी कहीं मत जाइएगा, इसी तरह से हमारे साथ रहें और हम बस यूं गए और यूं आए।
1: It's commercial time.
2: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces, building trust.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations! That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant! I will contact them to help my family's visa.
4: Sure, their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
7: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुशामदीद। रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैप के लाइव स्टूडियो से मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी मेजबान, आपकी होस्ट, ना सिर्फ आपकी होस्ट बल्कि आपकी दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा। और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कंफर्ट प्ले शो द डीवा डायलॉग, जहां हम बात करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, साथ ही साथ कुछ मोटिवेशनल कोटेशंस को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, मजे मजे की रेसिपीज को लेकर आते हैं और आपके लिए बहुत सारी ब्यूटी टिप्स। तो जी अब बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का फर्स्ट सेगमेंट। सो जैसा कि कल हमने बात की थी जिस टॉपिक के ऊपर, विच इज़ कॉल्ड द फिजिकल हेल्थ, जिसमें हमने सबसे पहले कार्डियो को डिस्कस किया था कि बेसिकली कार्डियो क्या होता है, और फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डियो आप सबके साथ एक्सप्लेन की, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह से ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारा वर्कआउट करें या फिर डेली बेसिस पर हम जिम जाएं, फिर ही जाकर हम फ्रेश हेल्दी रह सकते हैं। अगर आप तंदुरुस्त और तवाना रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ सिंपल बेसिक स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि योगा में और कार्डियो में क्या डिफरेंस होता है। सो डियर लिसनर्स, कल के प्रोग्राम का जब मैंने फीडबैक लिया तो मुझे मालूम हुआ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है कि किस तरह से खुद का ख्याल रखना है, अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा बनाना है। सो आप सब ने मुझसे डिफरेंट तरह की कार्डियो एक्टिविटीज शेयर की, जिनको जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इसी तरह से आप अपनी सजेशंस हमारे साथ शेयर करते रहा करें और अपनी जर्नी भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया करें। तो पहले बात कर लेते हैं उन सभी लिसनर्स की जो कि इस वक्त तक अपने आज के दिन का स्केड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि अब आपने प्रॉपर प्लानिंग कर ली है कि आज के दिन आपने क्या क्या काम करने हैं। सो अगर आप इस वक्त घर से रवाना हो रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए या फिर बिजनेस इंस्टीट्यूट के लिए, सो अगर आप चाहते हैं कि ये सफ़र आपकी ज़िंदगी में बन जाए खूबसूरत हंसी और खूबसूरत यादों से भरपूर, तो इस सफर को खूबसूरत बनाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम के संग। सो डियर लिसनर्स, आप ड्राइव करते हुए हमें फजा डैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं और इस जर्नी को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। सो जी अगर आप हैं अभी भी रास्ते में या फिर पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, सो इस सफर को बनाइए खूबसूरत हमें ट्यून करके। सो वेल लिसनर्स, अगर आप ऑफिस पहुंच चुके हैं और आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा या समहाउ आपने घर से जो कुछ सोचा था चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही या आपको पड़ चुकी है अपने बॉस की डांट, तो घबराने की कोई बात नहीं। समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि जैसे हम चीज़ों को प्लान करें चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चलें। सो जिस तरह से जो चीज़ चल रही है कभी कभी उसे उस तरह से छोड़ देना भी बेहतर होता है। साथ ही साथ उन ड्राइव करते हुए लिसनर से भी मैं मुहातिब होकर ये कहना चाहती हूँ कि एक बहुत ही प्यारी सी हमदर्दाना एडवाइस है आप सभी के लिए, वो ये है कि जब भी आप ड्राइव कर रहे हों तो कोशिश यही किया करें कि आप अपना मेन फोकस ड्राइविंग पर रखा करें। बी सेफ, बी केयरफुल, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हंसी है, इसे मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है अपने प्यारों के संग। सो हो सकता है कि अगर आप हल्की सी भी रैश ड्राइविंग करते हैं या फिर ट्रैफिक कवानीन का ख्याल नहीं रखते या फिर आपके माइंड में ये चल रहा होता है कि थोड़ा सा फास्ट ड्राइव कर लेता हूँ ताकि मैं वक्त पर अपने ऑफिस पहुँच जाऊँ या फिर कहीं लेट ना हो जाऊँ, सो कहीं देर से पहुँच जाना बहुत बेहतर है इसके कि आप कहीं ना पहुँचें। सो हमेशा कोशिश किया करें कि एहतियात से ड्राइव किया करें और अपने से जुड़े उन सभी लोगों के बारे में भी सोचा करें जो आपके एक गलत कदम की वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं। डियर लिसनर्स, ये तो हो गई बहुत सारी हमदर्दाना एडवाइस। वेल आज के टॉपिक की जाने बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर ने एक सॉन्ग रिकमेंडेशन भेजी है। सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने किसी भी लिसनर को बिल्कुल भी निराश नहीं करते, तो उन्हीं के लिए प्ले करते हैं उनका पसंदीदा गाना। सो आइए आप और मैं भी मिलकर सुनते हैं उनका पसंदीदा ट्रैक। सो ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर ये गपशप का सिलसिला तो चलता रहेगा, क्योंकि 10 बजे से लेके 12 बजे तक हमारा साथ तो इसी तरह से कायम दायम है।

Well, thank you so much, Sabahat, for suggesting us such a beautiful song. So, आपने इस गाने से पुरानी यादों को भी ताज़ा कर दिया. I still remember the time जब ये drama serial on air हुआ था. So, basically, हुआ कुछ यूँ था कि ये drama serial जो कि जिसका नाम है आंगन. So, ये partition based drama serial था जिसका ये OST अभी मैंने program में शामिल किया था. So, drama के हवाले से तो कुछ मनफी पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. वो ये हैं कि जब ये ड्रामा रिलीज़ हुआ था तो बहुत सारे फैंस बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि इट्स बीन 6 to 7 years अगो जब ये ड्रामा सीरियल आया था. तो अभी भी फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन हाउस हैं उन्होंने स्टिल ये ड्रामा सीरियल अभी तक यूट्यूब पर नहीं ऐड किया और ना ही किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे. सो काइंडली आप इस ड्रामा सीरियल को किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर ऑन एयर कर दें, क्योंकि आज भी फैंस इसको देखना चाहते हैं. सो ये एक छोटा सा मैसेज था उनके लिए. बाकी ये गाना मुझे पर्सनली बहुत पसंद था, और जब ये ड्रामा सीरियल आया था और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये साउंड ट्रैक सुना था, सो उस वक्त तो मैं हर 9th class में पढ़ती थी और अब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ. सो टाइम काफ़ी जल्दी गुजर जाता है और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता. और कुछ इस तरह से जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कहीं पीछे छोड़ आते हैं. वेल लिसनर्स, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सीरियल को टीवी पर देखा था. सो अगर आपने देखा है तो आप अपना फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कि ये कैसा था, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा हाइप थी. सो काफ़ी ज़्यादा फैंस एक्साइटेड है, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली अभी तक बहुत सारे फैंस ने नहीं देखा, क्योंकि ये किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल ही नहीं है. सो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के मेन टॉपिक की जानिब. सो कल हमने जैसा कि फिज़िकल हेल्थ के बारे में बात की थी, तो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और लोग अक्सर औकात इससे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि हेल्थ का मतलब होता है परफेक्टली फिट इंसान, और एक ऐसा इंसान जो कि दिखने में बज़ाहिर आपको ठीक नज़र आ रहा है, उसको कोई चोट नहीं लगी, वो प्रॉपरली उठ रहा है, बैठ रहा है और अपने सारे काम सर अंजाम दे रहा है. लेकिन क्या आप सब ने कभी इस चीज़ की तरफ ध्यान देने की कोशिश की कि मेंटल हेल्थ बेसिकली क्या होती है? सो मेंटल हेल्थ का ओवरऑल मतलब ये होता है एक ऐसी कंडीशन ऑफ योर इमोशन जहां आप साइकोलॉजिकली और सोशली बहुत सारी चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही हूँ. सो सिंपली डेफिनेशन आपसे शेयर करती हूँ. सो मेंटल हेल्थ मीन्स द ओवरऑल कंडीशन ऑफ योर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग. इट अफेक्ट्स हाउ यू थिंक एंड मेक डिसीजंस, डील विद स्ट्रेस, बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स, स्टडी और वर्क, अडैप्ट टू चेंज एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस, सी योर सेल्फ एंड योर अबिलिटीज. सो बेसिकली मेंटल हेल्थ मीन्स होता है कि एक ऐसी कंडीशन आपकी ओवरऑल कंडीशन कह लो, साइकोलॉजिकल कह लो, मेंटल कह लो, सोशल कह लो, जिसमें यह अफेक्ट करता है कि हाउ यू मेक डिसीजंस, कि किस तरह से आप मुख्तलिफ अनासर को देखते हैं, आप किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से स्टडी करते हैं, और आप किस तरह से डिफरेंट तरह के सिचुएशंस को टैकल करते हैं. सो गुड मेंटल हेल्थ डज नॉट मीन दैट यू आर हैप्पी ऑल द टाइम. एवरीवन एक्सपीरियंसेस सैडनेस, एंगर, फियर, स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट. लेकिन गुड मेंटल हेल्थ का मतलब ये होता है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हो और वो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करें ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन. सो होता है ना हम सभी की ज़िंदगी में, आई नो आप सब भी इसे रिलेट करते होंगे कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता होगा कि समटाइम्स ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाती हैं जो टोटली आउट ऑफ द माइंड होती हैं, हमने बिल्कुल भी ऐसा सोचा नहीं होता, लेकिन कुछ काम ऐसे हो जाते हैं. सो अगर आप उस सिचुएशन में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, देन इट मींस कि यू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ. बट अगर आप ठीक तरीके से बिहेव नहीं कर रहे, आप पैनिक कर रहे हैं, या फिर आपका स्ट्रेस एंजाइटी लेवल नॉर्मल रेट से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो डैट मीन्स कि आप एक बैड मेंटल हेल्थ का शिकार हैं.

लिसनर, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे साइंस जो आपको बताते हैं कि क्या आप एक गुड मेंटल हेल्थ के साथ जी रहे हैं या फिर आपकी मेंटल हेल्थ है खराब। सो सबसे पहले, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आप हैंडल करते हैं नॉर्मल डेली टास्क को बिल्कुल इजीली। आप कंसंट्रेट करते हैं डिफरेंट तरह के डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर, आपकी स्लीप साइकिल बिल्कुल प्रॉपर होती है और आप ज़िंदगी को जीते हैं, इंजॉय करते हैं बिल्कुल नॉर्मली। अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं, अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं और दूसरों से मदद तलब करते हैं जब आपको ज़रूरत होती है। और ये वो तमाम तरह के साइंस हैं जो कि ये शो करते हैं कि एक आदमी या फिर एक इंसान एक अच्छी मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं बैड मेंटल हेल्थ के ऊपर। सो बैड मेंटल हेल्थ मींस कि आपकी फिजिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल स्टेट कुछ इस तरह से नागवार हो जाती है जहां आप हर एक चीज़ को मनफी पहलू में देख रहे होते हैं। सो बेसिकली होता ये है कि सारी बात इंसान के दिमाग की होती है। सो दिमाग इंसान को सिग्नल्स देता है, तब इंसान पॉजिटिव सोचता है। दिमाग इंसान को सिग्नल्स देता है, तब इंसान नेगेटिव सोचता है। सो अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो कि एक बैड मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है, सो बेसिकली होगा कुछ यूँ कि वो हर एक चीज़ को बहुत मनफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। उसे दूसरे की बात हमेशा नेगेटिव लगेगी। समहाउ अगर उसके साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो वो तब भी यही सोचेगा कि इसमें उसकी कोई काबिली बहादुरी नहीं थी, उसका कोई भी हार्डवर्क नहीं था। और जैसे न केस अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उस सूरत में भी उसको ऐसा लगता है कि दूसरे जानबूझकर उसके साथ बुरा कर रहे हैं। और अगर कोई उससे मजाकिया तौर पर कोई बात कर लेता है तो वो उसको इस तरह से लेता है कि इसने मुझे तंस किया या फिर टॉन्ट मारा। सो ये कुछ साइंस हैं जो कि शो करते हैं कि आप एक बैड मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं। सो वेल लिसनर्स, अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी इंसान भला क्यों एक अच्छी गुड मेंटल हेल्थ के बजाय बैड मेंटल हेल्थ से सफ़र करेगा। सो आइए मैं आपसे वो भी शेयर करती हूँ कि किस तरह से इंसान बैड मेंटल हेल्थ का शिकार होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक लॉन्ग टाइम तक आपके साथ एक कॉन्टीन्यूसली पैटर्न रिपीट होता चला जाए जिसमें कॉन्टीन्यूसली आपके साथ बुरा हो, सो उस सूरत में एक ऐसी स्टेट आ जाती है जहां आपको वाकई ही लगने लगता है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ज़िंदगी तो बुरी चीज़ों का ही नाम है। सो इस सिचुएशन में अगर आपके पास आपके अपने हो, ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो, ऐसा फ्रेंड सर्कल हो जो आपको समझे, आपको अंडरस्टैंड करे, तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। बट मोस्टली केसेस पे ये होता है कि जब इंसान, कोई भी इंसान, जब वो बैड मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाता है, सो मोस्टली वो सबसे पहले अपने इनर थॉट्स अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से और अपने करीबी लोगों से शेयर करता है। सो उसके करीबी लोग क्या करते हैं, बजाय इसके कि वो उसको सपोर्ट करें, अंडरस्टैंड करें कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस बिटवीन दिस सिचुएशन, वो ये करते हैं कि वो भी उसके खिलाफ होकर ऐसे सोचते हैं कि ये तो इंसान अजीब है, पागल है, साइको है, यार तुम्हें क्या हो चुका है एंड ऑल ऑफ दिस। तो जब इस तरह के जुमले एक ऐसा इंसान सुनता है जो कि ऑलरेडी एक बैड मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहा होता है, सो ये मज़ीद उसे डिमोटिवेट करता है अपनी ज़िंदगी से, अपने डिसीजन से और उसकी एबिलिटी को कम कर देता है। और इस सूरत में इंसान बस इस बात को यकीन कर लेता है कि उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, उसे कोई भी नहीं समझता, वो खुद ही खुद के लिए काफ़ी है। सो ये कुछ तरह के सिम्टम्स होते हैं जिन सिम्टम्स या फिर जिन सिचुएशंस की वजह से आप एक बैड मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं। वेल लिसनर्स, बैड मेंटल हेल्थ का शिकार होने के और भी बहुत सारे लिसनर्स हैं। सो लिसनर, सो दूसरे वजूहात की जाने भी बढ़ते हैं। सो दूसरी वजूहात में आपका बैड स्लीप साइकिल टॉप ऑफ द लिस्ट है। अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि जब आपका स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, आप ना तो वक्त पर सोते हैं, ना वक्त पर उठते हैं, ना ही लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, घर से बाहर नहीं जाते, आप बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में भी ऐसा पॉसिबल होता है कि आप एक बैड मेंटल हेल्थ की स्टेट से गुजर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली तो इंसान घर से बाहर जाता है, वक्त पर सोता है, वक्त पर उठता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, फैमिली से मिलता है और अपनी ज़िंदगी को हर वक्त इस सोच में पड़ा रहता है कि किस तरह से इसे अच्छा, बेहतर और खूबसूरत बनाया जा सकता है।
साथ ही साथ सोशल मीडिया. सो बेसिकली आजकल जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करते हैं. हर वक्त एक कॉम्पिटिशन सा लगा रहता है कि मुझे फलां से बेहतर करना है, मुझे उससे आगे बढ़ के दिखाना है. जैसे कि बहुत सारे सोशल मीडिया ट्रेंड्स होते हैं उनको फॉलो करना. सो ये भी वो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है. और मैंने लोगों में ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी होते हैं बट स्टिल वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एज अ बीमारी ट्रीट नहीं करते. सो लेकिन एक गुड मेंटल हेल्थ का होना आपके लिए एक नेमत के जैसे है और एक बैड मेंटल हेल्थ का होना आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बीमारी. और इसके लिए ही लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. और अक्सर औकात मैंने ये भी देखा है कि जब कोई भी इंसान जो कि लंबे समय तक एक बैड मेंटल हेल्थ की स्टेट से गुजरता है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इससे कोई मसला समझा ही नहीं जाता और इसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है जिस तरह के ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. हम उन चीज़ों को डील करते हैं जो कि फिज़िकली हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि अगर किसी को चोट लगी है तो हम उसे ट्रीट करेंगे, अगर कोई गिर गया है हम उसे ट्रीट करेंगे. बट हम ये नहीं देखेंगे कि जिस तरह आपका फिज़िकली फिट रहना ज़रूरी है ठीक उसी तरह से आपका मेंटली फिट रहना भी ज़रूरी है. सो वेल लिसनर्स, इसी के लिए मैंने आज के प्रोग्राम में इस चीज़ को मौजूए गुफ्तगू बनाया. सो आप में से भी अगर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि समहाउ किसी भी बैड मेंटल स्टेट से गुजर चुके हैं या समहाउ आपको भी ऐसा लगा जिंदगी में कि आपके साथ सब कुछ पूरा हो रहा है या फिर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आप अपनी जर्नी भी हमसे शेयर कर सकते हैं थ्रू दिस नंबर 01157100971. सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, साथ ही साथ हमें कुछ अच्छी एडवाइस भी मिल जाएगी जो कि मैं बाकी के लिसनर्स से भी शेयर करूंगी. सो वेल लिसनर्स, आई होप कि अब आपके ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे कि अ गुड मेंटल हेल्थ, व्हाट इज द गुड मेंटल हेल्थ एंड व्हाट इज द बैड मेंटल हेल्थ.

लिसनर्स, अब जरा बात कर लेते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ नेचुरली सो यू डोंट नीड टू चेंज एवरीथिंग एट वंस. थिंक ऑफ अ मेंटल हेल्थ एज समथिंग यू मेंटेन डेली सिमिलर टू फिजिकल फिटनेस. सो जिस तरह से आप डेली बेसिस पर अपनी फिजिकल फिटनेस को बहाल रख सकते हैं, ठीक उसी तरह से आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करके अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं. सो इसकी मैं बहुत सारी टाइप्स आपके साथ शेयर करती हूँ. सो सबसे पहले टाइप नंबर वन मैं आपसे शेयर करती हूँ. सो द टाइप नंबर वन इज़ इम्प्रूव योर स्लीप. स्लीप एक बहुत ही मेजर इफेक्ट करता है आपके मूड पे, कंसंट्रेशन पे, मेमोरी पे और स्ट्रेस पे. सो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करना है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है स्लीप सोने में और उठने में, और कम से कम रोज़ाना 7 से लेकर 8 घंटे तक की नींद आपने लाजमी करनी है. और दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लीप मेंटेन हो, आप प्रॉपरली अच्छे से सोएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना फ़ोन यूज़ भी रिड्यूस कर दें जब आप सोने लगे हो, और सबसे बढ़ कर के आप अपना रूम अच्छी तरह से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें द वे यू वांट, ताकि आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहें और आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब ना हो. और कोशिश ये भी किया करें कि आप अवॉइड करें उन तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को, चाहे वो वर्क है, स्टडी है या फिर इंटरटेनमेंट, जो कि आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर कॉज है जिसके तहत आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं.

बात कर लेते हैं टाइप नंबर टू की जानिब। सो टाइप नंबर टू में आप किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो यू डोंट नीड अननेसेसरी जिम। आप अपनी बॉडी को सिंपली घर में मूव करके डिफरेंट तरह की

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनते हुए समातों को खुश आमदीद। रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो टीवा डायलॉग। और जैसे कि लिसनर्स आप सभी को मालूम है कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ द प्रोग्राम है मेंटल

Health. What is mental health? Good mental health, a bad mental health, and what is stress or overthinking? Saath hi saath ek natural detox. So, जैसा कि कमर्शियल ब्रेक से पहले मैं आपसे शेयर कर रही थी कि हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ नेचुरली. सो बेसिकली बाज़ूकात ऐसे सिचुएशन आ जाती हैं जहां लोग शिकार हो जाते हैं मेंटल हेल्थ के, यानी कि बैड मेंटल हेल्थ के. सो अगर आप भी इनमें से बैड मेंटल हेल्थ का शिकार हो चुके हैं या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी मेंटल स्टेट नॉर्मल नहीं है, सो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको करके आप नेचुरली अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़िंदगी को मज़ीद बहाल कर सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं. सो टाइप नंबर 1 तो मैंने आपसे शेयर कर दी थी, अब जरा टाइप नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं. सो अब आपको डेली बेसिस पर क्या करना है. डेली बेसिस पर अगर आप डेली 20 टू 30 मिनट्स वॉक करें, साइकिलिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, रनिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स या फिर योगा, सो ये आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. ना सिर्फ आपको फिजिकली फिट रखता है बल्कि आपको मेंटली रिलैक्स फील करवाता है. जितनी भी तरह का स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग या फिर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में चल रही होती हैं, जो वो अफेक्ट कर रही होती हैं, आपको बॉदर कर रही होती हैं, ये उनको हेल्प आउट करने में, सॉर्ट आउट करने में आपको हेल्प करता है. अब जरा बढ़ते हैं आगे टाइप नंबर 3 की जानिब. सो वो टाइप नंबर 3 में ईट अ बैलेंस्ड डाइट. सो योर ब्रेन नीड्स न्यूट्रिशंस टू फंक्शन प्रॉपरली. सो अगर आप चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेंटल स्टेट नॉर्मल नहीं है, तो उसे नॉर्मल किया जा सकता है. आप फोकस करिए अपने फूड्स पे, वेजिटेबल्स पे, होल ग्रेन्स पे, प्रोटीन सोर्सेज पर, नट्स पे और सीड्स पे. सो इससे ये होगा कि जब आपको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, तो साथ ही साथ आपके माइंड को भी प्रॉपर एनर्जी मिलेगी. सो इस एनर्जी के तहत जो आपका माइंड है वो प्रॉपरली वर्क करेगा और आपकी मेंटल स्टेट खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी. अब आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 की जानिब. सो द टाइप नंबर 4 इज गेट डेलाइट एंड स्पेंड टाइम आउटसाइड. सो स्पेंडिंग सम टाइम आउटसाइड, यानी कि आउटडोर, पर्टिकुलरली अर्ली इन द डे कैन सपोर्ट योर स्लीप वेक रिदम एंड प्रोवाइड अ मेंटल ब्रेक. सो बाज़ूकात एक सिंपल वॉक या फिर कुछ लम्हात किसी खूबसूरत से पार्क में, किसी भी ऐसी जगह जो नेचर के करीब हो, जो आपको कनेक्ट करे नेचर के साथ, ग्रास के साथ, ग्रीनरी के साथ, अगर आप इस तरह की जगह पे थोड़ा सा भी वक्त बिताते हैं तो ये भी आपके मेंटल स्टेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और आपकी मेंटल स्टेट नेचुरली अच्छी हो जाती है. सो अगली टाइप है मेंटेन रिलेशनशिप्स. सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेंटल स्टेट नेचुरली इम्प्रूव हो, तो बाज़ूकात ऐसा होता है कि इंसान को ज़रूरत होती है कनेक्शंस की. सो आपको चाहिए होता है कोई ऐसा इंसान जो आपको सुने, आपको समझे. तो इस सूरत हाल में अगर लाइफ में कभी भी आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है जो आपके आउट ऑफ द विल होता है, तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि जब हम बातों को अंदर ही अंदर रखते हैं तो इससे ये होता है कि वो हमें अंदर से डिस्टर्ब करती हैं और इससे हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है. सो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाता है या फिर कोई भी मिसकंसेप्शन, मिसकन्फ्यूजन, तो आपको चाहिए कि आप अपने फ्रेंड से बात करें, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करें और ऐसे दोस्त से जो आपको टोटली अंडरस्टैंड करता हो, जो कि आपको मज़ीद आगे से आर्ग्यूमेंट्स ना पेश करे, आपको मज़ीद समझाने की कोशिश ना करे, बल्कि आपको सुने, आपको समझे. इस सूरत में आप अपनी फैमिली से भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी कंसोलर या फिर थेरेपिस्ट से. यू डोंट ऑलवेज हैव टू डिस्कस सीरियस प्रॉब्लम. इवन नॉर्मल कन्वर्सेशन एंड स्पेंडिंग टाइम विद योर पीपल कैन रिड्यूस द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन. एंड लास्ट टाइप जिसकी मदद से आप अपने मेंटल स्टेट को इम्प्रूव कर सकते हैं वो है मैनेज सोशल मीडिया.

सो मतलब हम बात कर रहे थे लास्ट टाइप की कि हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ. सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेंटल स्टेट इम्प्रूव हो, आप बैड मेंटल स्टेट की सूरत हाल से ना गुजरें, सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मैनेज करें सोशल मीडिया को. अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंट एक्सपोजर करते हैं नेगेटिव न्यूज़ का, आर्ग्यूमेंट्स का, अनरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल्स का, और कंपैरिजन करते हैं अपनी लाइफ का दूसरों की ज़िंदगी से. सो इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये क्या क्रिएट करती हैं, स्ट्रेस को, एंजाइटी को और बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं. सो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको अपने सोशल मीडिया का टाइम लिमिटेड कर देना है. आपने बहुत कम वक्त सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उतने ही सोशल मीडिया के मनफी असरात आप पर गालिब होते हैं. सो सबसे पहले आप कोशिश यही किया करें कि आप अपने पूरे दिन का एक टाइम टेबल सेट कर लें, जिसमें आपको घर के बाहर के काम करने हैं, घर के काम करने हैं, फैमिली को टाइम देना है, और फिर उसके बाद जो थोड़ा सा वक्त आपकी ज़िंदगी में बच जाता है जिससे आप सोशल मीडिया को भी देते हैं, उसमें आप ये करें कि आप अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखिए. जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी मौजूद हैं जो कि आपको बहुत अच्छी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सो आप उनकी वीडियोस को देख लें. इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो रिलीजन वीडियोस को देख लें. कोशिश यही किया करें कि इंतशार या फिर इस तरह की जो भी नेगेटिव किस्म की सोशल मीडिया रील्स होती हैं, इनसे ज़रा गुरेज किया करें, क्योंकि आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस तरह की चीज़ें देखते हैं, वो तमाम तर अनासर आपके माइंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. सो अगर आप डेली बेसिस पर एक लिमिट सेट कर लेंगे सोशल मीडिया की, तो आपकी मेंटल स्टेट ऑटोमेटिकली अच्छी होना शुरू हो जाएगी. सो वेल लिसनर्स, ये तो थे कुछ तरीके, कुछ ऐसे मेथड्स जिनकी मदद से आप अपने सोशल मीडिया को खुद ब खुद इम्प्रूव कर सकते हैं. यानी कि आपको बिल्कुल भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की, साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको जिम वगैरह जाने की ज़रूरत है. सो हमेशा इस चीज़ को ध्यान दिया करें कि जिस तरह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है. सो इसका ख्याल भी आपने खुद ही रखना है. सो आई होप लिसनर्स आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, और इस हवाले से अगर मज़ीद आपको कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो डू लेट मी नो. आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा हमने सीरियस डिस्कशन कर ली है. सो फिलहाल के लिए प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक को शामिल करने का. सो आइए मिलकर सुनते हैं एक अदद खूबसूरत सा ट्रैक. इस ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात. ट्रैक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, थोड़ा सा इमोशनल है, बट आई होप आपको अच्छा लगेगा. सो ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, और गपशप का सिलसिला जारी करेंगे, और भी मज़ीद बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे.

से तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? वेल, उम्मीद तो यही है कि ट्रैक आपको अच्छा लगा होगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। सो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक था मेंटल हेल्थ, आई होप आपको इसके हवाले से तमाम तरह के कॉन्सेप्ट समझ आ चुके होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको नहीं समझ आई, या फिर आप चाहते हैं कि मैं उसे आपके लिए दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, तो उसके लिए आप हमें 01157100971 इस नंबर के थ्रू बता सकते हैं। सो हम मेक श्योर करेंगे कि आपके लिए हम दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। सो वेल लिसनर्स, अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है कुछ ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड बातचीत करने का, क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम तमाम तर फीमेल्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि डेली बेसिस पर इस वक्त तमाम तर फीमेल्स जो कि घर में मौजूद होती हैं, या फिर अगर आप घर से बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, सो आप सभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रही होंगी कि जब वेदर थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो इंस्टेंटली आपको टैनिंग हो जाती है, या फिर स्किन बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाती है। सो स्किन को मज़ीद डैमेज से रोकने के लिए और मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा DIY मास्क। इट्स नॉट कॉल्ड अ मास्क, सो बेसिकली इट्स अ स्क्रब। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि स्क्रब क्यों ज़रूरी होता है, और जो बहुत सारे लोग हैं वो स्क्रबिंग को स्किप कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है कि ये एक एडिशनल स्टेप है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन नेचुरली खूबसूरत दिखे, ग्लोइंग दिखे, सो उसके लिए आपको स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है। और स्क्रबिंग ना सिर्फ आपकी स्किन को खूबसूरत बनाती है, स्किन का बैरियर इम्प्रूव करती है, बल्कि स्क्रबिंग से आपकी स्किन जितनी भी डेड स्किन होती है वो निकल जाती है, समटाइम्स फेशियल हेयर भी रिमूव हो जाते हैं, और साथ ही साथ टैनिंग भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। सो आज मैं आपको बिल्कुल भी कोई केमिकल बेस्ड स्क्रब रिकमेंड नहीं करूंगी, बल्कि मैं आपको सिखाऊंगी होममेड स्क्रब कि किस तरह से आप घर पर कुछ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके ज़बरदस्त सा स्क्रब बना सकते हैं जो कि आपकी स्किन की टैनिंग को दूर करेगा, इंस्टेंटली आपको ग्लो भी देगा।

सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉडी स्क्रब की। सो द वन मिस्ड कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे लोगों में है वो ये है कि वो ऐसा करते हैं कि अपने बॉडी स्क्रब को फेस पर अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्क्रब के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आपने कभी भी बॉडी स्क्रब को फेस पर अप्लाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे हार्श पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्पेशली आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सो जो हमारे फेस की स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और सेंसिटिव होती है। तो जब आप उन हार्श पार्टिकल्स को अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, सो इससे ये होता है कि स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है। सो इसलिए सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से हम बॉडी स्क्रब बना सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से फेस स्क्रब बना सकते हैं। सो बॉडी स्क्रब के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। सो सबसे पहले हमें चाहिए 2 टेबल स्पून शुगर। आपने कोशिश करनी है कि आपने बिल्कुल फाइन ग्रेन इस्तेमाल करना है, यानी कि शुगर के पार्टिकल्स बिल्कुल भी मोटे ना हों, ठीक है, बिल्कुल बारीक भी ना हो, दरमियानी हो। साथ ही साथ आपने 1 टेबल स्पून कोकोनट या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है और 1 टीस्पून हनी। सो ये सिंपल से बेसिक से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर घर में ऑलमोस्ट पड़े हुए ही होते हैं। सो बस आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आपका ज़बरदस्त सा DIY मास्क बहुत जल्दी बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है। सो आपने मास्क को वीक में 2 to 3 times अप्लाई करना है ऑन योर बॉडी, नॉट ऑन योर फेस। सो आपने डैम स्किन के ऊपर इसे अप्लाई करना है, जेंटली मसाज करना है सर्कुलर मोशन में और 2 to 3 minutes तक कॉन्टिन्यूसली आपने मसाज करते रहना है। एंड देन उसके बाद आपने इसे रिमूव कर देना है। साथ ही साथ आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर इसके साथ पेयर अप कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जिन लोगों की स्किन एक्सट्रीमली ड्राई होती है तो जब वो स्क्रबिंग करते हैं तो मज़ीद ड्राई हो जाती है। सो अगर आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर इसके साथ पेयर अप कर लेंगे तो इससे आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी और इरिटेट भी नहीं करेगी। सो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलती हूँ कि अगर जस्ट इन केस आपके हाथ पर बाजू पर अगर कोई चोट लग जाती है तो आपने कभी भी उसके ऊपर स्क्रब अप्लाई नहीं करना, क्योंकि स्क्रब में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि जेंटली आपको आपकी बॉडी को एक्सफोलिएट करते हैं और आपकी डेड स्किन सेल्स को निकालते हैं। सो मे भी हो सकता है कि आपको अगर कोई चोट वगैरह लगी है तो वो इरिटेट हो जाए। सो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी आप इस स्क्रब को वीक में 2 to 3 मरतबा अप्लाई करें एंड यू विल सी इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ये तो ज़रा बात होगी बॉडी की, अब ज़रा बात करते हैं फेस की। सो जिस तरह से आपकी बॉडी को जेंटल एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से आपके फेस को भी जेंटल एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है। सो मैं आपको बताती हूँ कि आपने फेस स्क्रब किस तरह से रेडी करना है। सो फेस स्क्रब के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जो जो इंग्रेडिएंट्स वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। 1 टेबल स्पून प्लेन योगर्ट, 1 टीस्पून फाइनली ग्राउंड ओट्स एंड 1 टीस्पून हनी। सो ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपने इस्तेमाल करने हैं। योगर्ट तो ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होता है और हनी भी। हाँ, अगर आपके घर में ओट्स नहीं मौजूद तो वो आपको बआसानी किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएंगे। अब आपने इसे किस तरह से अप्लाई करना है उसका भी मेथड मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। सो आपने सबसे पहले इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने जेंटली इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है और फेस पर अप्लाई करने के बाद हमेशा डैम स्किन पे आपने इसे अप्लाई करना है और जेंटली मसाज करना है फिंगर टिप्स की मदद से। 20 to 30 seconds इज इनफ फॉर योर फेस। 20 से 30 seconds के बाद आप फौरी तौर पर इसे रिमूव कर दें और रिमूव करने के बाद आप कोई भी अच्छा सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो आपने इसे वीक में सिर्फ 1 मरतबा इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फेस की स्किन बॉडी की स्किन से काफ़ी डिफरेंट होती है। सो आपने बिल्कुल भी इसे ओवर यूज़ नहीं करना, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्किन बैरियर डैमेज हो जाए।
सो डियर लिसनर, जिस तरह का आजकल मौसम चल रहा है और बाज़ुकात ऐसा ही अक्सर होता है कि जब मौसम थोड़ा सा तब्दील हो रहा होता है तो उस सूरत हाल में आपकी स्किन बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाती है। सो स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी होती है, हमेशा आप जेंटल एक्सफोलिएट किया करें अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को, इससे आपको बहुत अच्छी क्लियर स्किन मिलती है और साथ ही साथ आपकी स्किन खूबसूरत दिखने लगती है। एंड अगेन, अगर आप चाहते हैं कि आप सन बर्न से बचें तो उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप कोई भी अच्छा सा साथ ही साथ सनब्लॉक भी पेरन अप करें। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सनब्लॉक को टोटली स्किप कर देते हैं, बट इट्स रियली इम्पोर्टेंट, सनब्लॉक बहुत ज़रूरी होता है और हमेशा कोशिश ये किया करें कि आप SPF 50++ इस्तेमाल करें। अच्छा, बहुत सारे लोग SPF 30+ यूज़ करते हैं और उनको लगता है कि अच्छा अब उन्हें कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल रही है। सो SPF 30+ कभी भी इनफ नहीं होता आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन को यूवी रेज से बचाने के लिए, अल्ट्रावायलेंट रेज से बचाने के लिए आपको ज़रूरत होती है एटलीस्ट SPF 50++ की। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें क्योंकि इसी तरह से आप अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं, आप खुद को जवान रख सकते हैं और ग्लोइंग बना सकते हैं। अच्छा, स्किन भी बिल्कुल एक पौधे की तरह होती है। जिस तरह अगर आप घर पर कोई भी पौधा लेकर आते हैं तो जिस तरह आप उसकी लुक आफ्टर करते हैं, उसे वक्त पर पानी देते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं, तब जाकर आपका पौधा ग्रो करता है। ठीक उसी तरह से आपकी स्किन को भी बहुत सारी आपकी एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। सो मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ अपने सभी लिसनर्स को, अपनी सभी रिवाज को, कि आप कभी भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स की जाने मत जाया करें क्योंकि उनके बहुत ही ज़्यादा हार्श रिजल्ट्स होते हैं और बैड इफेक्ट्स होते हैं। सो कोशिश यही किया करें कि आप हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें क्योंकि वो टोटली ऑर्गेनिक होती हैं, नेचुरल होती हैं और प्लस पॉइंट इज कि उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। सो वेल लिसनर्स, ये थी हमारी आज की एक ज़बरदस्त सी DIY मास्क या फिर कह लो एक ब्यूटी टिप। आई होप आपको ये ब्यूटी टिप अच्छी लगी होगी। सो आपने लाजमी इस स्क्रब को घर पर बनाना है और बनाने के बाद आपने अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है कि आपको ये स्क्रब कैसा लगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको इवन आफ्टर और बिफोर रिजल्ट्स कैसे लगे। और माय लवली डिवाज, अगर आपके पास भी हैं ऐसी ही कोई ज़बरदस्ती होम मेड रेमेडीज तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं और हम उसे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं। सॉरी, किस तरह से शेयर करना है वो तरीका भी एक बार फिर से बता देती हूँ। 01157100971 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यानी कि मेरा और आपका रबते का जरिया। सो इस नंबर के थ्रू आप हमसे शेयर कर सकते हैं कुछ भी जो आप चाहें। इसी के साथ ही अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो डियर लिसनर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार और फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम का अगला सेगमेंट, विच इज द मोस्ट फेवरेट सेगमेंट ऑफ अवर टीवाज, क्योंकि जहां खाने की बात हो वहीं हमारी तमाम दर फीमेल्स की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो कमर्शियल ब्रेक के उस पार हम स्टार्ट करेंगे आज का द स्पाइस किचन। सो आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। We will be right back after a very short break. So stay tuned with us.

0: It's commercial time.
1: महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, अहले नौटियों को जिसने ईद मिलादुन नबी मुबारक। और इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ने के लिए एक्सेलसियर नवाब ने सजाई है एक खूबसूरत रूहानी और वजदानी शाम, जहां अश्क मेरे नाथ सुनाए तो जब क्या। अ ब्लेस्ड इवनिंग ऑफ नाथ लव एंड रिमेम्बरेंस, महफिल मिलादुन नबी, मंडे 7th सितंबर 2026 एट 6 PM ऑनवर्ड्स। इस महफिल में दुनियाए नाथवानी के अजीम और नामवर सनाखान मुस्तफ़ा शामिल हो रहे हैं। कारी शाहत महमूद कादरी, सैयद हसनुल्ला हुसैनी, हाजी हुसैन यूसुफ, वसीम अब्बासी और तौफीक अहमद तौफीक नकाबत के फ़राइज सर अंजाम दे रहे हैं। हुनैन मसूद, तो भूलिएगा मत, खुशु व खुजू के साथ बावजू होकर इस बाबरकत शाम का हिस्सा बने अपने हलका व अहबाब के साथ, क्योंकि अश्क जब तक वजू नहीं करते हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते। वेन्यू है एक्सेलसियर नवाब, 527 लोटस रोड, नॉटिंगम, ND51EL। मीडिया पार्टनर फजा 97.1 FM।
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुशामदीद। रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो रीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप पे। तो लिसनर जैसा कि है आप सभी को मालूम कि अब प्रोग्राम में वक्त आ चुका है अगले सेगमेंट की जाने बढ़ने का विच इज कॉल्ड द स्पाइस किचन, जहां हर दिन हम ट्राई करते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद। और मैं आपके लिए लेकर आती हूं मजेदार सी रेसिपीज जो कि बहुत ही ज्यादा डिलिशियस होती हैं, बट द प्लस पॉइंट इज कि वो बहुत इंस्टेंटली बन जाती हैं, सो आपको कुछ नया, कुछ मुनफरिद ट्राई करने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ आपकी ये समस्या भी दूर हो जाती है कि आज खाने में क्या पकाया जाए, क्योंकि आई नो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है कि आप डेली बेस पर ये डिसाइड करो कि आज खाने में क्या बनाया जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही मुश्किल टास्क होता है जैसे कि आप अपने एग्जाम से पहले सोच रहे हो कि क्या मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि आप प्रिपरेशन किए बिना भी नहीं रह सकते और करने का दिल कर नहीं रहा होता। सो अपार्ट फ्रॉम अ जोक स्टार्ट करते हैं आज का मेन सेगमेंट। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। सबसे पहले आपसे शेयर करती हूँ मैं उसके इंग्रेडिएंट्स। सो जल्दी से आप अपनी नोटबुक, डायरी, कॉपी रेडी कर लीजिए क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार से इंग्रेडिएंट्स ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। सो वेल लिसनर, जितनी देर में आप अपनी नोटबुक डायरी रेडी करते हैं उतनी देर में हम एक प्यारा सा ट्रैक सुन लेते हैं। सो वेल मैं सोच रही थी कि काफी दिन हो चुके हैं हमने वीकेंड का कोई भी ट्रैक नहीं सुना, सो आइए मिलकर सुनते हैं वीकेंड का एक जबरदस्त सा सॉन्ग। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वीकेंड के गाने सुनने के बाद इंसान ऑटोमेटिकली थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है और सुस्ती काहली ऑटोमेटिकली ही दूर हो जाती है। सो आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है वीकेंड का। फिलहाल के लिए तो मेरा फेवरेट गाना सुन लेते हैं। सो सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे।

सो वेल लिसनर्स, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ आज की मज़ेदार सी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी कॉन्टिनेंटल रेसिपी। सो जैसा कि प्रीवियस वीक में हमने टोटली एशियन रेसिपीज़ को ट्राई किया था, सो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पूरे वीक में हम टोटली ऐसे रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे जो कि थोड़ी सी यूनिक हैं, प्लस आपने बहुत कम ट्राई की हुई हैं। सो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन, 250 ग्राम्स अपने चिकन ब्रेस्ट यूज़ करना है, और कोशिश करना है कि उसे बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में आपने कट कर लेना है। द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज़ मैदा, 3 से 4 खाने की चम्मच। अगला इंग्रेडिएंट है हमारा बटर, आप टोटली यूज़ कर सकते हैं बटर भी और कुकिंग ऑयल, अच्छा दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल हो या फिर जो आपकी प्रेफरेंस हो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें चॉइस कर सकते हैं, लेकिन आपने इस्तेमाल करना है 2 खाने के चम्मच। अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है गार्लिक, 1 छोटा चम्मच, लेमन 1 अदद, चिकन यखनी 1/2 कप, 1.5 कप नमक और काली मिर्च, हंसपे ज़रूरत हंसपे जायका। सो ये कुछ बेसिक से सिंपल से इंग्रेडिएंट्स थे जो कि मैंने आपसे शेयर कर दिए। आई होप आप सभी ने नोट कर लिए होंगे, बट फिर भी अगर कुछ आपसे मिस हो चुका है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो कि है 0115710091। वेल लिसनर्स, ये तो थे इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आपसे कर दिए शेयर। अब बनाने के तरीका देखते हैं कि किस तरह से हम इस रेसिपी को झटपट बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे इस रेसिपी के लिए। सबसे पहले आपने चिकन के पीसेस को हल्का सा नमक और काली मिर्च लगाकर रख देना है, फिर इन्हें मैदा और साथ ही साथ बीच में थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स इन सब में कोट कर लेना है। तो कोट करने के बाद आप इसे 10 से लेकर 15 मिनट्स के लिए रख दें, इससे ये होगा कि मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी और तमाम तर मसाले चिकन पीस के अंदर अच्छी तरह से लग जाएंगे और अंदर अब्सॉर्ब हो जाएंगे। सो सेकंड स्टेप में हम चिकन फ्राई कर लेंगे। सो आप कोई भी फ्राई पैन ले सकते हैं या फिर कोई भी बर्तन, आपने उसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल या फिर बटर ऐड कर लेना है, उसे अच्छे से गर्म कर ले, फिर साथ ही चिकन को मीडियम आंच पर दोनों तरफ से 3 से लेकर 4 मिनट तक फ्राई कर लें जब तक वो बिल्कुल गोल्डन ना हो जाए। सो 4 से 5 मिनट के बाद आप चिकन को निकाल कर आराम से प्लेट में रख लें और इसे थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें और अगले स्टेप की जाने बढ़ें जहाँ हम बनाएंगे एक सॉस। अब आपने उसी फ्राई पैन में बचा हुआ 1 चम्मच बटर शामिल कर देना है, साथ ही साथ बारीक कटी हुई लहसुन इसे शामिल कर देना है और इन दोनों को 30 मिनट के लिए हल्का सा भून लेना है। अब इसमें चिकन यखनी और लेमन का रस शामिल कर दें, अच्छी तरह मिलाएं 2 मिनट तक उबलने तक ताकि सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। कोशिश आपने यही करनी है कि आपकी जो सॉस है उसकी कंसिस्टेंसी ना ही ज़्यादा रनी हो और ना ही ज़्यादा थिक, सो टोटली बैलेंस करके आप अपनी सॉस को बना सकते हैं। अब बारी आती है हमारे फाइनल स्टेप की, यानी कि अब आपने इस सॉस के अंदर अपना फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मज़ीद इसे 1 मिनट तक आप पका लें ताकि सारा जायका चिकन में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। सो आपकी मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी हो गई तैयार। देखा आपने कितनी सिंपल सी थी, बेसिक सी थी, जस्ट फ्यू स्टेप्स को फॉलो करके आप ये ज़बरदस्त सी कॉन्टिनेंटल रेसिपी तैयार कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की द स्पाइस किचन की इंस्टेंट रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और लाजमी इसे ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमसे शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही मज़ीद अच्छी अच्छी आप भी हमें रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। सो आप हमें बता सकते हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक अगर रेसिपी चाहिए हो या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी कंट्री की कुजीन को आपसे शेयर करूँ, सो डू लेट मी नो किस तरह से 0115710091, क्योंकि ये है मेरा और आपका रابطے का जरिया। सो इस नंबर के थ्रू आप मुझसे हर तरह की डिस्कशन कर सकते हैं। सो वेल
उम्मीद करते हूँ कि आज की रेसिपी आपके घर में बच्चों को तो बहुत अच्छी लगेगी, बल्कि बड़ों को भी अच्छी लगेगी, क्योंकि इसका बहुत ही स्वीट टैंगी सा टेस्ट है। सो आज ही इसे ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सो वेल लिसनर्स, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम के करीब करीब पहुंच चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। वेल, आप हमें अपने सजेशंस दे सकते हैं कि किस तरह से हम डीवा डायलॉग को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके लिए बेटर वर्जन बना सकते हैं, या फिर आप ये भी सजेशन दे सकते हैं कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं, सो हम उस तरह के टॉपिक्स को प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि ठीक 10 बजे से लेकर ठीक 12 बजे तक हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कुछ ऐसे अवामिल के मुतल्लिक जो आप ना जानते हो या जिनसे आप आगाह ना हो, आपके नॉलेज में इजाफा करें, साथ ही साथ गुफ्तगू भी जारी रखें, आपकी भी कुछ बातों को सुने, साथ ही साथ कुछ अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें, साथ ही साथ मज़ेदार सी रेसिपीज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, कुछ अच्छे से ट्रैक्स को शामिल करें और फिर ब्यूटी टिप्स को। सो बस कुछ इसी तरह से हमने अपना इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज या फिर डिजाइन किया है आपके अकॉर्डिंग। सो वेल लिसनर्स, अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप रेडियो फजा 97.1 एफएम की इस फैमिली का हिस्सा बन सके, सो उसका तरीका भी मैं आपसे एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। www.radiofaza.com.uk ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। सो इस वेबसाइट के थ्रू आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं, बल्कि आप जान सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम से जुड़ी हर तरह की इंफॉर्मेशन। सो कौन सा प्रोग्राम किस दिन किस तरतीब से है आने वाला, इसके अलावा रेडियो फजा 97.1 एफएम पर कौन से न्यू प्रोग्राम्स हैं आने वाले, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पर ही मिलेगी। और अगर आप चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका सिंपल सा तरीका है, आपको जाना है एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 एफएम, और आने वाली फर्स्ट एप्लीकेशन, जी हाँ, जो पर्पल कलर के आइकन के साथ है, वही है हमारी एप्लीकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लीजिए इसे इंस्टॉल और बन जाइए हमारी इस फैमिली का हिस्सा। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इस हवाले से अगर आपका कुछ भी कहना हो या कोई टॉपिक डिस्कस करना हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जाते जाते आप सभी के साथ एक अच्छी सी पॉजिटिव बात शेयर कर देती हूँ, जो कि आपको मोटिवेट करेगी कि आप अपना पूरा दिन अच्छे से स्पेंड करें, अपनी फैमिली को टाइम दें और अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करें। वो एक बहुत ही मशहूर किसी हस्ती ने कहा था कि वो इंसान दुनिया में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जिसका कोई गोल ही ना हो। बिना गोल के आप बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि आपको किसी ने एक सहरा में छोड़ दिया है और आप बस चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, और आपको मालूम नहीं है कि आपका रास्ता कहाँ है। सो गोल के बिना आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मुनफरिद, कुछ अलग, कुछ नया करके दिखाएं, सो उसके लिए ज़रूरी है यू हैव टू सेट योर गोल। सबसे पहले गोल सेट कर लें, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मंजिल का तयन कर सकते हैं। सो वेल लिसनर्स, ये एक छोटी सी बात आपको मोटिवेट करने के लिए और आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहेगा। प्रोग्राम खत्म हो रहा है लेकिन स्टिल आपका दिन अभी बाकी है, सो आपने भी कोशिश करनी है कि आपने इस दिन को पॉजिटिव रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों में अपना वक्त सर्व करना है, अच्छे से दिल लगा के ऑफिस में काम करना है, और अगर आपको कोई भी छोटी मोटी डांट पड़ जाती है तो उसे बिल्कुल भी संजीदा नहीं लेना, क्योंकि अक्सर औकात ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। और घर जाकर अपने अपनी फैमिली का भी बहुत सारा ध्यान रखना है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि उन्हें आपके वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो जी, मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी एंडलेस गॉसिप्स के साथ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक प्यारा सा ट्रैक प्ले कर देती हूँ ताकि आप सुनते सुनते मुझे अलविदा करें।

0: Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: Attention,
2: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

फिलहाल आज मैं बड़े ही खूबसूरत एक टॉपिक शामिल करूंगी प्रोग्राम में। मैं कल सोच रही थी और जब मेरे और आपके दरमियान वक्त ख़त्म हुआ था, फिर उसके बाद मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया कि मैं क्यों ना इसके साथ कल जो है प्रोग्राम में इस टॉपिक को जो है वो शेयर करूँ आपके साथ, फिर उसके हवाले से डिस्कस स्टार्ट करूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप अपना टॉपिक शामिल करवाना चाहें अपनी पसंद का तो मैं उसको भी शामिल कर दूँगी। हाँ, उसके रिलेटेड अगर मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन हुई ना तो मैं आपके साथ ज़रूर उसको शेयर करूँगी।

अभी जो है दरअसल मेरी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है और गला मेरा थोड़ा सा बहुत दर्द कर रहा है, बल्कि तो वो मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत भी महसूस हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पर आप जैसे खूबसूरतों का हमें सुनने के लिए होंगे वहाँ पर बोलना तो पड़ेगा, लेकिन कम कम ही बोलेंगे, लेकिन कम बोलेंगे लेकिन अच्छा वाला बोलेंगे। खैर अभी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ, सो आपको ये ट्रैक पसंद आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर 107.1 FM एंड ऐप। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा, ट्यून करके रखिएगा फजल 97.1 FM को एंड ऐप को। मिलते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के उस पार।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। वेल, प्रोग्राम में जो है एक छोटी सी फरमाइश और हमारे पास मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको भी प्रोग्राम में पूरा कर दिया जाए, फिर आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करना है वो मैं आपके साथ वापसी पर आगे कर लूँ। बट वही बात आ गई कि जब आपसे गपशप करने का मज़ा आने लग जाता है तो प्रोग्राम में या तो कमर्शियल ब्रेक हायल हो जाती है, उसका समय आ जाता है, या फिर यूँ होता है कि वक्त ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस टाइम पे वक्त भी हमारा है और वो क्या बोलते हैं, मतलब मुझे तो डायलॉग भी नहीं बोलने आते। मतलब हम इतना बोल सकते हैं कि इस टाइम के बादशाह जो है ना वो हम हैं, तो हम इस दो घंटे में जो मर्जी कर सकते हैं। इट्स मीन कि हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकते हैं, टॉपिक को आप तक शेयर कर सकते हैं और ट्रैक्स भी प्ले कर सकते हैं अपनी मर्जी के। बेशक हमारे पास जितनी भी फरमाइशें मौजूद हों हम उनको भी प्रोग्राम में प्ले करेंगे। खैर, ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक की शुरुआत बता देते हैं कि मैंने आज का एक छोटा सा टॉपिक डिसाइड किया था कामयाबी और खुशी के हवाले से। मतलब सक्सेस एंड हैप्पीनेस, इन दोनों में से ज़्यादा क्या ज़रूरी है और इन दोनों की अहमियत क्या है। मतलब आपकी नज़र में कामयाबी क्या है और खुशी क्या है। सो वेल, इसके बारे में डिस्कस हम आपसी भी आके करेंगे। अभी के प्रोग्राम में वक्त हुआ जाएगा एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। और साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास रहेगा। ट्यून करके रखिएगा फजल 97.1 एफएम को एंड ऐप को। चलते हैं इस छोटी सी चुनमुन सी कमर्शियल ब्रेक की जाने।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus, and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mundi. Slow-cooked, aromatic, and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner, and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

0: का नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH Solicitors, होर कौन? ओ वधिया ने दोस्ताना माहौल तेज ते जल्दी कम कर देना। सोने ते स्वागा ये क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
0: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
0: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
2: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना आईडी 7।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Huzza 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से रात 10:30 बजे तक।

0: ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं, और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
4: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
5: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
6: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
5: फजा 97.1 FM, हर पल आपके साथ साथ।

0: We are playing Fizzan 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham,

0: लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
2: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

अस्सलाम वालेकुम जी आया नू ते खुश आमदीद जी। तुस सुनने पे हो रेडियो फाजा 97.1 एंड डैब। जड़ा कि लाइव जा रहा नॉटिंगम यूके सो ते मैं आ तुसा ना मेजबान तुसा ना भरा बासत अली राजा। साढ़े प्रोग्राम का नाँ है जी पटवारी बैठक। ते इस प्रोग्राम की चलाने आस्ते सिर्फ साड़ा मकसद ये है कि असा पटवारी जुबान च मिठी जुबान च असा वह गल्लां करिए जिहड़ियां कि तुसां ने दिलै दियां गल्लां होण। ते इस प्रोग्राम

इस प्रोग्राम में असं गल करसा जी अपनी सोहनी पटवारी मिठी जबाना ने बारे में तो असं अपनी सोहनी पटवारी गल करसा तो पटवारी जबान जल्द गल करो तो फिर बिचू अपनी मिट्टी नहीं खुशबू हसनी अपने लोगों दियाँ वो यादा हसनिया अपने रवाज अपन जड़िया साड़िया रस्म अपनी सकाफत है उसनी बिचू एक खुशबू हसनी।

जी ते तुसें अज ना साड़ा जड़ा प्रोग्राम है उस ना मकसद है कि असां गल करिए देश ते प्रदेस नहीं ते गाना यकीनन सुन के चंगा लगा उसी ते इस हवाले नाल अगर सुन कुछ आखना चाहने हो तो तुसां साड़े की मैसेज भी करी सकने हो ते हुण असां गल करने हैं जी सब तो पहले देश ते प्रदेस ने अगर असां पहले दो पार्ट करिए तो पहली गल जिहड़ी है वह बननी जनाबे वाली अपने सोहने देश नहीं ते गल है कि देश होना कैवै देश एक ऐसी जगह वै जिथे असा तुसा पैदा होए सां जिथे साड़ा घर सी बल्कि जिथे साड़ा घर है साड़ियां वो गलियां सन साढ़े वो महल सन वो दोस्त यार सन ते वो गल्लां सन ते देश च वो दरख्त सन जिथे शामी बही ते असां एक दूए ने दुख सुख फोलने आने सां देश वो मिट्टी है जिसनी खुशबो बंदा भावे जिथे मर्जी चला गच्छे उसकी लाजमी असनी रहनी ते देश एक ऐसी जगह वै जिथे तुसां गी रोने आस्तै कोई मूढ़ा लब्भी जाना पर जिला परदेस च बंदा असना ना तो परदेस बंदे की सब कुछ देना लेकिन बंदे ने अंदर एक कमी रही जानी तुसां भावें जितना मर्जी वरसा परदेस च रवो फिर भी तुसां की यह लगना कि शायद तुसां इत्थे मेहमान ही हो परदेस च सब कुछ लभी जाना लेकिन मां नहीं वो आवाज नहीं लभनी जिहड़ी पुत्रा की बुलानी होनी सी ते पुत्र तखना होना सी वो भैणा भरावां नाल प्यार नहीं लभना वो अपने नहीं बैठक नहीं लभनी बचपन नहीं वो यादा नहीं लभनियां ते यादा नहीं गठड़ी की जिसलै असां खोलने आं ते बचपन ने बारे विच यकीनन तुसां दियां भी बड़ियां यादां हो सन अपने बचपन की एक बारी सोची ते जिसलै तुसां ये माड़ियां गल्लां सुन सो ते यकीनन एक दफा तुसां की एहसास हो सी कि क्या कुछ असां पिछे गवाई आए हां वैसे बचपन दियां खेडां भी कैसियां खेडां होनियां सियां सवेरे तो शामी जियां खेडना ते शामी घर जाना थकी हारी ते सही रहना ते पठवार दियां जिहड़ियां खेडां सुनना वह खेडां भी निरालियां सुनना ते खेडां ऐसियां ऐसियां निरालियां सन जिसलै बच्चे नंगे पैर भी दौड़ने होने से हुण तां अजकल ने बच्चे भी जहरी गल है बी केयरफुल हो गए तो बचपन जिसलै अम्मा रानी डांट खाने होने सा हैं डांट डांट तो वैसे लफ्ज थोड़ा और हो गया वैसे उसकी पटवारी कुछ और आखने क्या आखने दसो ना तो इट्टी टल्ला भी खेलने होने सा ना निक्किया बंटे खेलने होने सा हैं ते कुसे की पतंगबाजी ना शौक होना होना सी ते कोई बंदा जड़ा ना वो अपनी अपनी खेड़ा सारी खेलने होने से

सब तो ज्यादा याद तुसा की अम्मा जी रानी हसनी, अब्बा जी नहीं हसनी, अपने घरें नहीं हसनी। या अपने संगियां दोस्तां नहीं हसनी, या बचपन ने उन्हां खेड़ां नहीं हसनी, या अपने ग्रां नहीं याद हसनी है। इन्हां सारियां चीज़ां तो हटी ते या फिर उस बंदे नहीं याद हसनी जड़ा हाले जियां तुसां की डीकना पिया कि कदू माड़ा चन्न वापस आसी। देश ते प्रदेश नी गल असां पहला टॉपिक तां ही चुनिया क्योंकि ये जड़ा उनवान आ, ये जड़ा मौजू आ, ये साढ़े दिलां ने बहुत नेड़े आ, ते इसने आस्तै शायद एक परदेसी की सोचना नहीं पैना कि ओह कह गलबात सी।

ते जनाब तुसें तखने पे साढ़ा प्रोग्राम पठवारी बैठक ते इसने तुसें त्रै तो पंज तक साढ़े नाल हो ते अज ने प्रोग्राम च दूआ गीत असां हुण शामिल करन गए आ ते गीत जड़ा ओ तुसां ने तुसां की जरूर पसंद आ सी गीत है पिछे मुड़ वे डोला पिछे मुड़ी सकना बंदा वैसे काम औखा होया लेकिन शायद मुड़ी सकना चलो गीत सुनाने हैं तुसां की फिर उस तो बाद बाकी गपशप लाने हैं।

अम्मा रानी गल करने करने आ अब्बा जी की किस तरह भुली सकने आ। बहुत सारे ऐसे जवान होने जिहड़े 18 साल तक 20 साल तक 22 साल तक 30 सालों तक अपने वालद ने सिरे पर अपने घर विच रहने वालद नहीं मेहनत होनी जिहड़ा उन्हें की पढ़ाना लिखाना उन्हें की एक बड़ा आदमी बनने विच उन्हें मदद करना ते बहुत सारे ऐसे दोस्त भरा भी हो सन जिहड़े अपने वालद ने सिरे पर ही इत्थे जिहां पहुंचे हो सन बल्कि यकीनन हर बंदा इस तरह ही पहुंचया।

सॉन्ग वैसे तुसां की केड़ा सुना तुसां दस्या ही क्यों नहीं, मैसेज करो ना। कुछ बंदे ने फरमाइश आई भी कि साढ़े की ऐसा कोई गीत सुनाओ कि जिसने साड़ी झस आ जाए।

ते सोंग तुसां आस्तै इक बड़ा ही जबरदस्त आंदा रब साई लिख छोड़ी रोजी परदेसां विच ए तैर महमूद नैयर होरां गाया ते तुसां इस सोंग गी इंजॉय करो फिर मिलने आं तुसां नाल।

चलो हून थोड़ी संजीदा गल्लां चों बाहर निकलने आं। ते जिसलै बंदा परदेस च असना ना ते करै ना खाना भी बंदे की याद असना, ते खाना जेह्ड़ा है ना वह हर बंद अपनी अपनी कोई ना कोई फेवरेट डिश होनी है। ते कुसै बंदे की वैसे पटवारी ने जेड़े डिशा ही है ना वह भी बड़िया नवेकलियाँ ते बड़िया साफ सुथरिया जड़िया दुए खित्या में थोड़ी जी डिफरेंट मिली हैं, लेकिन पटवार ने एक अपना टेस्ट है। जिसलै बंदा परदेस जा जाना ना तो कोई बंदा अगर तुसा ना पाकिस्तान तो असना होवे पिया ते बंदा कई बार उसकी आना जरा माड़े आस्ते ना लस्सी वाला साग बनवाई आना, कोई उसकी आना माड़े आस्ते कदा कुरा बंदे की कड़ी पकौड़ा भी याद आ जाना। वैसे तुसा नी फेवरेट डिश केड़ी सी? मैं ये सोचना कि असा ने जेड़े पटवार ने खास चीज़ है मेलिया पर जाओ तो उत्थे तुसों की जलेबियाँ मरस्से ये चीज़ा भी नज़र असनिया जड़िया के पटवार ना एक खास रंग है। तो खाने पीने तो याद आई कई दफ़ा निकिया असा खाली एक करने होने सा कई दफ़ा प्याजे नाल भी रोटी खाई कि ना बंदा तो उसना भी बड़ा एक स्वाद जासना होना सी।

बहरहाल संघियों, साढ़ा प्रोग्राम तकरीबन 4:22 हो गए यूके ना टाइम, तो तकरीबन मजीद अद्धा घंटा रही गया असं तुम साथ है। तो प्रोग्राम अगर सुन सा ज्वाइन किया तो सू दसने जनाब कि सुनने पे हो 97.1 फजा रेडियो डैम, और इस साढ़े प्रोग्राम का हिस्सा बनने तुसा साढ़े की व्हाट्सएप 1157100971 है, तो अपने दिल की गल सुन सा लाई सकने हो। अच्छा, कुछ संगी भरावान की कॉल भी आई, लेकिन असा कॉल तुसानी अगले प्रोग्राम तो शामिल करसा इंशाल्लाह।

बहरहाल संगी एक दोस्तें फरमाइश की थी आना कोई पटवारी ने नाल शेर भी साढ़े सुनाओ ते कोशिश करने तुसा कोई पटवारी ने शेर जड़े ना वो भी लाने नाल।

इयै जे दर्दनाक मौके पर, इयै जे गम ने मौके पर बंदे की अपने नहीं बहु याद असनी। लेकिन परदेस असल इम्तिहान ही इत्थे ही किन्ना कि जिसलै बंदा जाना चाहना होवे लेकिन वह जा ही ना सके। तो कई दफा इस तरह भी होना कि बंदा इत्थे पैसे कमाना होना, इत्थे वो मेहनत मजदूरी करना होना, तो कोई खुशी ने मौका घर आ जाए तो वह फिर भी उस खुशी ने मौके च भी शिरकत नहीं करना। वो आना चलो कोई गल नहीं, मैं ना शिरकत करना, लेकिन माड़े भैन भरावान कि मैं इतों जितने पैसे मैं जा सा, मैं अगर मैं आपो जाना वा तो इतने पैसे माड़े ले जा सन, ऐसे हिसाबे कताबे चो पे ही जाना इस जिंदगी ने रौले बच्चे कि अगर मैं इतों जा सा फ्लाइट ना खर्चा उसी ये मामलात हो सन, तो इस नालों अगर मैं इतने पैसे इसने पर ला सा तो इतने पैसों में पिछे निके भराओ नहीं भैनों नहीं शादी हुई जाती। कई बार बंदे ने आड़े ये मजबूरियां भी आ जानियां, ता ही बंदा जड़ा है वह फिर बहु कुछ चाहने होया भी नहीं करी सकना, जा ही नहीं सकना, खुशी ना मौका होवे या गम ना मौका होवे। परदेसियां इम्तिहान ही होना।

अच्छा जी, माड़े भ्राओ, एक तो फिर सुन की खुश आमदीद आने जनाब। तुसा अपना प्रोग्राम पटवारी बैठक जड़ा है वो बासत अली राजा ने संग तुसा सुनने पे हो, तो जड़ा कि 97.1 फाजा पर तुसा लाइव सुनने पे हो नॉटिंगम तो। तो साड़ा जड़ा प्रोग्राम है वह हूँ अपने इख्तामी मराइल आले पास जाना पे। तो अज ना साड़ा ये पहला प्रोग्राम बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा, आडियंस नवी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और उस तो बाद एक अच्छी गपशप हुई है। देश तो परदेश साड़ा टॉपिक सी अज ना। तो हूँ आखिरी टाइम मैं ये गल करना चाहना कि अज की बैठक जी साड़ी वह खत्म होने वाली है। तो बैठक खत्म होने वाली, लेकिन एक गल मैं करना चाहना कि मैं ये समझना वा कि बहुत सारे ऐसे लोग के जड़े शायद इस गल एग्री भी करने उस के प्रदेश खाली असाना नहीं जड़े असा प्रदेश बैठे हैं, बल्कि उन्होंने साढ़े अपने भैन भ्रावान भी है वो जड़े साढ़े अपने में जड़े साढ़े की डीकने में पिछे है उन्होंने भी वो प्रदेश ही है, क्योंकि जिसल अस मिली सकने वह साढ़े की नहीं मिली सकने। तो जहरी गल है उन्होंने भी एक प्रदेश ही है। प्रदेश बंदा असना कामयाबी हासिल करने कामयाब भी हो जाना, अपनी जड़ा बंदा मेहनत करना एक जहरी गल है, अल्लाह ने ज़्यादा उसकी लाजमी सिला देनी है। लेकिन जड़ियाँ चीज़ा पिछे रह जानी शायद इंसान दोबारा उस जड़ा वेला बंदे ना गुजरी जाना उस वेले की शायद बंदा हासिल नहीं करी सकना। तो जड़े लोग पिछे रात रखने होने उन्होंने भी शायद अस अपने लफ्जा बयान ना करी सकने। पिछे कितने कीमती रिश्ते, कोई माँ है वह अपने पुत्र ना इंतजार करनी पी, कोई प्यो है वह अपने पुत्र ना इंतजार करना पाया, एक बीवी है वह अपने हस्बैंड ना वह अपने खावन ना इंतजार करनी पी, तो एक शोर है, तो एक बच्चा है जड़ा कि अपने वालद ना इंतजार करना पाया। बच्चा वो छोटा जहा होना जिसल वालद परदेस चसना, तो जल वापस जाना तो बच्चा जवान होना। तो एक भैन है जिहड़ी भराओ ने इंतजार करनी होनी, वैसे भैणा ने रिश्ते भी बड़े बेलोस से होने। बंदे ने सारे ज़्यादा भेड़ लड़ाइया निक्की निक्की भैन भरावान नाल होनियां, लेकिन सब तो ज़्यादा प्यार भी इन्हां नाल ही होना। तो भैन भरा इंतजार भी करने होने बंदे ना कि साड़ा परदेसी भरा कदों वापस आए सी ते साड़ी मुलाकात हो सी। सारे रिश्ते ये गल पुछने होने कि कदू ऐसे कदू वापस ऐसो जी।

लेकिन बस कुछ मजबूरियां होनियां, बंदा नहीं जाई सकना, कोई ऐसे मामलात हो जाने, कोई ऐसियां गल्लां हो जानियां, कुरे दिले फिर बट्टा भी रखना पेई जाना, क्या करे बंदा हुण। ते ओह किसे शायर ठीक लिखिया सी कि गम जे छुपना चाहना ते फिर छुपण दे

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
8: फजान 97.1 FM,
7: आई लव इट।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM, आई लव इट.

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Get ready to move.
2: It's all about the beats.
3: Wow,
4: FM. Only Tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

जी पापा असगर, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एंड यू रिक्वेस्ट फॉर सॉन्ग के मिगी सॉन्ग सुनना है। बिल्कुल असा तुसा गाना लोने और कोशिश करने उसी तुसा उसे पेश करने तुसा जी डेडिकेट कर सा। और पापी असगर एज ऑलवेज इज वन ऑफ माय मेन रेगुलर लिसनर्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी दिया है, ऑलवेज सपोर्ट करने जिथे भी हुआ जिथे मिले बड़े प्यार ना, बड़ी मुहब्बत ना, बड़ी शफकत ना मिले और यकीन को मिलने ने फिर बंदे ने दिल भी करना है। तो जितने भी माड़े कश्मीरी भैन भ्रा जितने भी कश्मीरी कम्यूनिटी है जितने भी वसने हो वसने रहो जितने भी तुसा वसने दुनिया ने किसी कोने ते किसी खिते तू हो तुसा किस केड़ी जमीन तू हो जिथे नहीं हो अल्लाह ताला सारे की खुश रखें।

वेलकम बैक आफ्टर द ट्रैक। हाँ जी पापा असगर, उम्मीद करने तुसें कि गाना पसंद आया। उसी मलका तिरानम नूर जानी आवाज पेश किया जाइए सी जी। तुसें सुनी रंगे कश्मीर, और रंगे कश्मीर पेश किया जाइए रेडियो फिजा 97.1 FM ने स्टूडियो विच। तुसें अपना शो, अपना होस्ट उमर जंजुआ ये शो लैके तुसें खिदमत हाजिर है जी। बिल्कुल कश्मीरी हो, जीने रहो, जिथे भी हो जीने रहो। लव यू ऑलवेज। जितने भी साड़ी लिसनरशिप है, जिथे जिथे भी, सारे की असा बड़े दिल नाल मोहब्बतां नाल अस याद भी करने आं। वी ऑल लव ऑल आवर लिसनरशिप। इट डजंट मैटर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू बिलोंग टू, बट मारे प्रोग्राम ना इज डेडिकेटेड टू रंगे कश्मीर एंड इट्स फॉर द कश्मीरी कम्युनिटी।

Thank you so much, Robert. I've lined up a track. This track is somebody is a young singer, a fuck. उन लाने गाना तकने हैं ना मैं पहली बार रिसर्च की थी यदि इस ना गाया लेट्स सी हाउ दिस ट्रैक स्टैंड्स आउट उम्मीद करते हैं तुसा कि जो ऐसी है ब्रदर आई यू रिक्वेस्टेड फॉर फोक सॉन्ग्स देयर आर मेनी बट आई वुड लाइक टू प्ले दिस ट्रैक एंड आई होप यू टेक दिस साड़ी तरफों असा तुसा कि डेडिकेट करने सारे के करने आई थिंक दिस इज द बेस्ट ट्रैक इज ऑन हिज वे

It's just like brother texted me and he said, good, now you speak from the heart. Dilan dil banda gal karna na oh dil vich ik jayegi lakdi hai dilan dil gal dil ki lagni hai sat lagni chahiye ni hai taaki tusan ki fir ho jana na dard mehsoos hona bande ki hona ke oh ji pata nahi kya ho jaisi asan call karsa saadi awaz kon sun si no don't be shy tusan call karso tusan takki ki kar si dua kar si triya kar si is tarah silsila badhna chahiye na and main bhi tako बैठे हो तुसाने वास्ते सारे वास्ते बैठा हूँ ठीक है आज मैसेजेस कॉल्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रेडियो शो जितने भी तुसा हो द टॉपिक्स आई एम थिंकिंग अबाउट हैविंग द टॉपिक्स फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इसे रंगे कश्मीर प्रोग्राम तुसा दसो मैं कड़ा टॉपिक रखना चाहिए मैं आई वुड लाइक टू नेम द टॉपिक्स विच विल कम फ्रॉम माई लिसनर्स टॉपिक का नाम रख सकते माड़े सुनने वाले चाहने वाले माड़े भैन भ्रा जरा मैं दसन ना वी ना कुछ वेस्ट एनी मोर टाइम कोई कमर्शियल ब्रेक इस तरह आई जानी है अद्धा घंटा इस तरह गुदी जी समझ कोई लगनी कोई टांगे जंग जाते आई एम गोइंग टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू आवर सिस्टर यू डिड नॉट मेंशन योर नेम एंड यू सेड जस्ट प्ले दिस ट्रैक फॉर मी एंड ऑल ऑफ माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स थैंक यू हियर वी आर योर ट्रैक इज ऑन हिज वे

0: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
1: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
0: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
1: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
0: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: Welcome back after the commercial break. You are listening to Rangi Kashmir with one and only your own host, Umar Janjua. Jio Kashmir, jo jithe bhi ho, jine raho, vasne raho, vasne raho, tati wahan lage. I do apologize. Obviously, it was our commercial break time, so we had to take our commercial break. And track which was played by Alish Banur, and we have to stop there. We paused it for you. Don't forget, we're not going to let this get wasted. This will be played for you again. The commercial break jehdi hai bada zaruri hona hai is obviously jitne businesses and jitne bhi sari community hai all around Nottingham and all over the world and all around UK and Europe and wherever you are listening to us. Everybody's rude here. Obviously, businesses, they take pay money and... Jitne bhi businesses, whoever advertise with us, obviously, we have to play them, and your advertisement will be played twice an hour, 48 times in a day. 48 times in a day, tu sani advertise, kura bhi nahi chalni, swear. Ek radio channel do lava, and our radio channel is Radio Fizar 97.1 FM / Tab Radio. Tusana apna radio. A بہت سارے میسیجز, بہت ساری کالاں بھی آئی ہیں جناب. آبویسلی آئی آلویز ریسیو کال وین ایور دیئر از اے کمرشل بریک از بینگ پلیڈ, مجھے کال اچھنی ہے ماڑے بھن بھرا مجھے اس لیے کال کریں جلد کوئی نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہونی ہے اس لیے. اور کرما لو چکیا نہ کرو, کم کال می لائیو ان دا اسٹوڈیو. آف کو کپل مور میسیجز ٹو ریڈ آؤ, بٹ بفور وی گو دیر وی ہیو اباؤٹ 25 منٹس لیفٹ. اصل شو نے 5 منٹ رہی گئے جی, تو وہ کہنے کو اسٹریٹ بیک ٹو دا ٹرک. کوئی ٹانگے جنگ جانے فور دا سسٹر آم شو بڑا مزہ تو سی آئی رہا ہوا اسی, لیکن کمرشل بریک نہ بھی اپنا مزہ اس کی پلے کرنی پینی ہے. But not to worry, here it is your track again.

0: हर बोली सिखो, सिखनी भी चाहिदी।
1: हर पक्की वे के कच्ची नहीं ढाई दी, ओ नशियां ने पत्त दे पंजाबी
0: गब्बू। I don't like पंजाबी हिंदी नू। What a beautiful track जी, भाई गुरदास मान इसने नाल ला। मैं तुसा को इजाजत की इंसान सो रही हां। आज ना टाइम साड़ा इतना ही सी। Until next week, you guys take care, love you all, and दुआवां च असां की याद रखे, मिकी माड़ी पूरी टीम की, असां ने इस प्रोग्राम रंगे कश्मीर की। Until next week, तुसा अपना बहुत सारा ख्याल रखे सारे भैणा भरा, and इंशाल्लाह जिंदगी वफा की थी, फिर तुसा मुलाकात हो सी, गप्पां गड़ल्लां भी हो सी, टॉपिक भी आने कर सा इंशाल्लाह। तुसा सारिया ने जिन्हें मैसेजेस किया, जिन्हें कॉल्स की, जिस तरह भी तुसा माड़ी सपोर्ट की, इस प्रोग्राम की अप्रीशिएट किया, असा तुसा ने तुसा को बहुत सारी थैंक यू तुसा ने करने, बहुत सारे दिल का शुक्रिया अदा करने, थैंक यू एवर सो मच। एंड अंटिल नेक्स्ट वीक, यू टेक केयर, कीप स्प्रेडिंग लव एंड कीप डिलीटिंग हेट्रेड फ्रॉम योर लाइफ। बिल्कुल जी, खुशियां बांटो, खुश रहो, अपना अपने प्यारे का ख्याल रखो, और कोशिश करो अपने वास्ते भी बाकियों वास्ते भी आसानियां पैदा करो, मुश्किल नहीं। अंटिल नेक्स्ट वीक, रंगे कश्मीर तू अपने भ्राओ की रेडियो फजार प्लेटफॉर्म तू इजाजत दियो। अंटिल दैन, अंटिल नेक्स्ट वीक, इंशाल्लाह जिंदगी वफा की तुसा मुलाकात हो सी, अपना अपने प्यारे का बहुत सारा ख्याल रखे, अपने भ्राओ की अपनी दुआ याद रखे, एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन तरफ खैर रही। नेक्स्ट वीक मुलाकात हो सी एट द सेम प्लेटफॉर्म एंड द सेम रेडियो स्टेशन, तुसा अपना रेडियो स्टेशन रेडियो फजा 97.1 FM/DAB रेडियो।

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल,
2: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Huzza 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972 ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
0: बिगर बिगर एंड बेटर बेटर द रेडियो स्टेशन फॉर पीपल हु लव म्यूजिक।
5: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays.
10: Foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM।
13: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब्द के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: गया।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention!
4: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
6: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
5: सलासा ट्यूशन सेंटर?
6: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
5: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
6: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
5: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
7: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
8: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
9: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: It's commercial time.
6: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2.
9: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
10: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
11: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
10: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
11: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
10: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
11: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
12: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
10: Park Foods, जो नाम है मायार का।
13: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
14: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
13: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
14: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
13: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
15: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM,
1: आई लव इट.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.